0: Assistant Commandant Engineer in Group A gazetted category. Both male and female Indian citizens, including subjects of Nepal and Bhutan, are eligible to apply. The post carries level 10 as per the 7th CPC. Online applications are open till 20th May 2026. Detailed advertisement, eligibility conditions, an online application form is available on the official recruitment portal on the website, that is at www.recruitment.itbppolice.nic.in. Jesus and Mary College, affiliated to the University of Delhi, has invited applications for the post of a principal. Applications are open for all eligible female candidates from Catholic women religious congregations. The last day to apply is 23rd May 2026. Full details, eligibility criteria and application format is available on the college website, that is at www.jmc.ac.in. Indian Institute of Management, Raipur, has invited applications for the post of a software developer and junior accounts executive. Candidates can check qualification requirements, experience criteria and application procedure on the official recruitment portal. The last day to apply is 17th May 2026. For details, kindly refer to www.iimraipur.ac.in/recruitment. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार।
2: रोजगार समाचारों के साथ मैं विनीता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, अमेठी। सिम्युलेटर इंजीनियर के लिए एक स्थान यहाँ रिक्त है। igrua.gov.in पर आप जाएं और इस वेबसाइट से समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग आशुलिपिक समूह ग एवं घ के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित पद्धति में आशुलिपिक समूह ग एवं घ परीक्षा 2026 का आयोजन होगा। भर्ती के बारे में और भी अधिक जानकारी आप परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति पर देखें, जिसे आयोग की वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा के संदर्भ में यदि और कोई भी शुद्धि पत्र हो, परिशिष्ट हो या फिर महत्वपूर्ण सूचना होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस। रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन ₹50,000। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE BTech सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की एक इकाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। पद का नाम है प्राचार्य और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर एक है जो कि यूआर के लिए है। आवेदन प्रपत्र आवश्यक योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं के लिए कृपया आप वेबसाइट www.bkm.ac.in को देखें। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं सहित प्रबंधक वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के पक्ष में आप भेज दें। विज्ञापन की तिथि 20 दिनों के भीतर वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी 221010 उत्तर प्रदेश पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित करें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का सुरक्षा निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।

0: eligible to apply. The post carries level 10 as per the 7 CPC. Online applications are open till 20th May 2026. Detailed advertisement, eligibility conditions, an online application form is available on the official recruitment portal on the website, that is at www.recruitment.itbppolice.nic.in. Jesus and Mary College, affiliated to the University of Delhi, has invited applications for the post of a principal. Applications are open for all eligible female candidates from Catholic women religious congregations. The last day to apply is 23rd May 2026. Full details, eligibility criteria and application format is available on the college website, that is at www.jmc.ac.in. Indian Institute of Management Raipur has invited applications for the post of a software developer and junior accounts executive. Candidates can check qualification requirements, experience criteria and application procedure on the official recruitment portal. The last day to apply is 17th May 2026. For details, kindly refer to www.iimraipur.ac.in/recruitment. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार।
2: रोजगार समाचारों के साथ मैं विनीता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, अमेठी। सिम्युलेटर इंजीनियर के लिए एक स्थान यहाँ रिक्त है। igrua.gov.in पर आप जाएं और इस वेबसाइट से समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग आशुलिपिक समूह ग एवं घ के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित पद्धति में आशुलिपिक समूह ग एवं घ परीक्षा 2026 का आयोजन होगा। भर्ती के बारे में और भी अधिक जानकारी आप परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति पर देखें, जिसे आयोग की वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा के संदर्भ में यदि और कोई भी शुद्धि पत्र हो, परिशिष्ट हो या फिर महत्वपूर्ण सूचना होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस। रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। इन्हें मिलेगा समेकित वेतन ₹50,000। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE BTech सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की एक इकाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। पद का नाम है प्राचार्य और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 1 है, जो कि UR के लिए है। आवेदन प्रपत्र, आवश्यक योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं के लिए कृपया आप वेबसाइट www.

0: vkm.ac.in को देखें। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं सहित प्रबंधक वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के पक्ष में आप भेज दें। विज्ञापन की तिथि 20 दिनों के भीतर वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी 221010 उत्तर प्रदेश पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित करें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का सुरक्षा निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामना।